0: చంపా. ఏ చంపా?
1: హాయ్ అబ్బా.
2: హా బోల్, డైట్ చేసుకున్నా?
0: अरे फंदे दोटो तीती धर लो, अच्छा करके रंधा कर, अजहरिया और तीती खूब खाबो, जा जा जा।
2: हाँ हाँ, जाई थी जाई थी।
3: ये हरमा हरमा, घर के आची।
0: हाय अब्बा मुआजन।
4: अरे ये हरमा हरमा।
3: अरे कोथा तो की काने सुनिस लाई। अरे हरमा
0: महाजन पे नाम दरगाजी पे ना।
3: हाँ, अदालत थी का डिग्री लिया से जी। तुम्हारी घर जमीन गोरु बकरी सब हमार। भाग के कंधे का मुद्दा खोल लिबो। भाग।
0: गोद धरी दरगाजी।
3: चचचच।
0: महाजन, खोरार खाती रिसान कुछ फसल है लाई।
3: हाँ, पुराना बहाना छोड़। निकल जा घर से। ये दरगाजी।
0: हाँ बोल। हो जोर इस सुनता माप कर दे हो जोर।
3: वो चल वेगला। वो और चल वेगला। कर तुम्हारे मियाँ तो कुछ है?
0: हाँ। घरे लाई है क्या?
3: आई
5: घरे लाई।
4: ए सिपाही, जा तो अंदर जा, देख।
3: और होगा तो मेट के उठा लिया है। जा
0: नहीं लही दरगाजी, और शरीर तो जूत लाई है क्या?
3: ए सिपाही, जा अंदर जा, उठा लिया है।
0: ए महाजन महाजन, दोस्तों टक्कर खातिर मुर मेट के उठा लिए, जन्म भर बेच बेटारी खटाबी। ये तो तुहार की मौन बेचार।
3: तू बाप जावे, तू बाप जावे। चल।

0: बैठ जा।
1: जो बेदी तो देखिस ना, इटा हुलो मरांगबुरुर बेदी। इटो सफेद कपड़ा दे पाथर तो ढका छे। इटो हुलो चक्कर देवता। अरे सुन सुन सुन, देवता हुकुम कर छे, सिद्धो कानो और समाजे लया रूप दिबे। हाँ, मुरा पिलचू हराम और पिलचू बुढ़ीर संतान, किसकु हस्ता सोरेन हेम्ब्रम टुडु सब हमरे एक गोतर भाई भाई।
2: देवता मुरे हपन दिछे, भूले छे कि सिद्धो कानो तुम्हारा संताल दे रक्षा कर, संताल राज बना, नहीं ले केव बच भिलाई, ओही दिकु महाजन देर खत्म कर, साहेब देर ई दीस थे के खेता कर।
3: अरे अरे सुन सुन, उधर हाथे जे बंदूक आछे, कथा तो बोल।
2: देवता आवा के यो बोले छे कि वादेर बंदूक थाक न केने, तुआदेर तीर धनुकेर काछे वादेर बंदूकेर गोली बिल्कुल पानी होया जावे। पुनो डर लाई भाई रे, मु तुहादेर साथे आछी, संदार राज बना, ए जुलूम रुकते हवे रे भाई, नहीं ले सब मुर्मी सब सब।
4: लेकिन सुनो, राज बनोते गेले लड़ते हवे, दिकु महाजन देर खत्म करते हवे। जान कबूल,
2: हाँ जान कबूल, जान कबूल।
4: सिद्धु कानू मुदे राजा।
1: हे सुन, मुदे राजे सीमाना टो हुवे, पूरब राजमहल, पश्चिमे कहाल गांव, उत्तरे रानीगंज, और दक्षिणे साइथिया, ये सब मुदे दखल लेते हुवे।
2: अखन थेके ओ महाजन देर बीघा पिछु बछरे एकारा खजना दुब। एकारा मोसेर लंगल बछरे दुआना और बलदेर एकाना किराया दुब।
4: महाजन देर कर्ज ए बछरे एक पैसा बेहद दुब।
1: ई कथा गुलान सकल गेरा में जाइए, सांताल देर बुलबी, सकल के समझाबी। और सुन सुन, साल पता पठाइले समझाबी सभा हो बैक, और तीर भेजले जानबी लड़ाई हो बैक। हाँ, और जो आदमी बेईमानी करबे
2: वो खत्म करबा। सुन भाई रे भाई, घरे घरे अस्त्र तैयार करते हो बैक, कुच्ची लतीर टंगी बल्हाम, और अखन अखन मुरा दिकु महाजन दिगेर जुलुमेर लागत ओ कमिश्नर साहेबेर कच के बिचारे लेंगे, आज जी पठाबो। बिचार चाहिए मुरा, ले जा बिचार।
4: बिचार ना पाबो तो दिकु महाजन देर घर बाड़ी गद्दी लूट करबो, वहां देर खत्म करबो। हूँ।

0: सभा करिए छे।
1: हाँ भगनाडीहर माठे 10,000 संताल मिलित होई छिलो तो भरत दिकु महंजदर खत्म करिबे बुले छे।
0: नॉनसेंस हाफ नेकेड ब्लडी जंगलीस तुम्हारे खत्म कर दे।
1: सीधू कानो के उहरा भगवान के तरह माने।
0: सीधू कानो कुना चे लोक
1: भगनाडीहर चुनार माझीर बेटा। चुनार माझीर चार बेटा सीधू कानो चंदू भैरव सब भाई के वो बीर सिंह खेपा कर छे हुल कर बे मुनिया सुनिया छे।
0: मुनिया?
1: हाँ।
0: Who is मुनिया?
1: उधर लोग हमार दलाल।
0: Oh, that's good. वा के हमारे काजे लगाओ बख्शीस मिल बे।
1: लेकिन साहेब मुदर जान तो खतरा में।
0: अरे नहीं नहीं नहीं डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी हम लोग तुम्हारे के मदद दिबे बहुत।
1: वो सालो बोले महाजंदर खजना दू बोलाई ददन दू बोलाई बिहार दू बोलाई
0: ना दिबे तू वहां दे जमीन घर छीने लिबो घरे आग लगाई दिबे।

0: बोले कि संताल राज बनाबो साहेबरा उद के छे
1: उद
0: हां
1: व्हाट सूट उद के आछे भगत
0: माने खतम बोले सादा कुत्ता दा ई दिस का खेदा कराइबो
1: खेदा कराइबे हां दोस ब्लडी बैडबेरियंस जाओ जाओ जाओ तुम घर जाओ तुम्हारा डर लग गया छे डरो मत भगत साहेब लोग तुम्हारे साथ ही आछे वी विल ट्रीट देम प्रॉपर्ली चाओ तुम जाओ घर जाओ
0: हुजूर माई बाप हुजूर माई बाप
2: भगवान हुए हमरा के भूले गेली सीधो
3: लाए लाए रे काने हमारा कुन बहुत काम काज गिरामे पहाड़ा है जंगल है दिन रात घूर छी टुकचन सोमाय मिल चलाए रे
2: हमरा के तुहा साथे ली भी
3: हाँ एक काम काज तू कर भी
2: कैने मीटी चले मूलीसना तुहा साथे घूर बो हुल कर बो मू जिंदगी भर तुहा साथे थाई बो काम काज कोई बो
3: हाँ लेकिन ये काम तो करते हिम्मत दरकार हाँ जान तो भी चले जाते हैं पर
2: जान को बोल तो बु तू हर के छाइते लाइट बो
3: मुदर दौले आवर मेये लॉक लिया आजते पार भी
2: हाँ हाँ टुकनी के संगे लिए लुबो वो हर भी तो मूल लेहन को पालतो
3: हाँ हाँ कि तो अरा अरा मैं चाय हुल करते हवेक रे हुल करते हवेक मेयार जरूरत अच्छे और सुन कनी आज संझेर बेला उस सुंदरी नदीर किनारे चली आए आस्ते पर भी
2: हां
3: तू साथे जरूरी कथा अच्छे ठीक है जी तो
2: जरूर जीपो

0: हाँ हाँ मुनिया माझी मुँह खुद आँखों से देख लो और साहेब महेश दारोगा के हुकुम को इच्छे तीन रोज के अंदर सीधो कानून पत्ता दीते
1: सालो मुनिया
2: और कुछ खबर आछे काने मुनिया वो मुनिया माझी के
0: और एक ता साहेब आंसलो वहाँ साथे अंग्रेजी थे कमिश्नर साहेब कुथा बोल चिलो कुछ ही समझ में नहीं आया लो
2: हाँ सुन सुन सुन काने वो मुनिया माझी पर कड़ा नजर रखेस वार साथे दोस्ती कर लेकिन बहुत होशियार और कमिश्नर साहेब तो
0: हाँ हाँ कमिश्नर साहेब मुर साथे मस्करा करे राते हमरा के वार घरे बुलाए हमरा के बहुत प्यार करे
2: हाँ हाँ सुन सुन काने लेकिन अपनी जोत संभाल के
0: हाँ
2: हाँ जवाब जल्दी जा जा
3: कन्हो ये कन्हो कन्हो कन्हो
1: टुकनी
3: हाँ
1: अरे तू ये तो रहता है
3: भाग भाग कन्हो भाग
1: क्या नहीं
3: हमरा के पंकड़े चिलो गुजड़े कुचिला तेज चिलो गुंबा दिखे जा चिलो हाँ। और सी समय महेश दरगा और दो सिपाही हमरा की घेराव कर लो
1: हाय बा
3: पूछे ए छोकरी सीधो कनो कुथाय जानिस
1: तो फिर
3: हमार पेटर काछे उटा देखे पूछे ए छोकरी तुहार कोचड़ी किया छे देखा देखा
1: सत्यानाश
3: मो बोलम किया थाइबे बच्चा आछे गो पीर हमरा के पूछे तू इतना अंधारे जंगले केने मो बोलम घर जाई छी आइगा
1: बाप रे जानले तो तू हार के खत्म कर इत महेश
3: मुँह डर से मुरी फिर पूछे ये जंगले तुहार घर चल देखे मु बोलम कुछ कुछ लेते होबे घरे दाना पानी कुछ लाई
1: महेश दारोगा टपके खत्म करते होबे
3: कैसे
1: सुन मु तुहार के मतलब तो पा अखुन चल चांद भैरव के खबर टाती चल चल जल्दी चल
3: चल हाँ
1: ये जाते ही मुतेर भाईक्ते हब्बे चल चुपने चल चल चल

0: तू बहुत अच्छा छोकरी आछे तोके आमी घरे रेखे दिबो तुए के लिए आमी घर बसाबो
1: मोर मरद आछे
0: मरद आछे तो ठीक आछे आमी दूसरा मरद हबो हे आज राते तोर घरे जाबा हैं खूब पियो आज के तोर साथे खूब मजाक मारबो
1: तू टुकड़ा बॉस आइस छी
2: कोता जे छी सुन कोता जे छी सवार हैं कोता के जे छी ए छोकरी
0: अरे जल्दी आना हमें तो जनाब बस है रहे छी
1: ई चंपा चंपा जल्दी जा कनो के खबर कर महेश सर का फांदे पड़े छे
3: हाय अप्पा कोता से
1: मुर दुकाने बसे हाड़िया पीछे तू जा जल्दी जा
3: हां हां अब तू वार के रुक के रख
1: हां हां रख छी जा आही अबा पूरा हांडी खत्म कर छी सरग साहब
0: हां बिल्कुल हांडी पूरा खत्म हो गेला चल तो नाम जानो कि टुकनी तू और घर के आज गए एक कोने जा बच्चा
1: हाय अब्बा गिर पड़े तो तू ते लाचीस लिसा तो तुहर के जूर पाइड़े छे तू बस बस
0: बस आता गया
4: ईसा लो महेश उठ उठ
0: कौन कौन सा मैं डकचीस
4: कौन अरे तुहर बाप रे
0: उठ तू कौन है कानो
4: सालो हरामी
5: Shame, shame, Major Barrows, shame. How could they kill Mohesh? মহেশের সাথে আর্মস থাকে সিপাই থাকে দেন
6: ওই দিন হার্ট ছিল হার্টের ভিতর হু আর ট্রেটারস আর হু আর নট ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড আউট স্যার আমার মনে হইতেছে হোল সাঁওতাল কমিউনিটি ইনভলভড উইথ দ্য রিভলিউশন
5: হোল সাঁওতাল কমিউনিটি আই অলসো থিঙ্ক সো
6: অ্যানাদার প্রবলেম স্যার দে লেভ দেয়ার লোকালিটি ওরা এখন ইয়ালপুরের জঙ্গলে আছে
5: ইয়ালপুর
6: আমাদের টার্গেট এখন পিয়ালপুর
5: Then you attack পিয়ালপুর We have to find them and kill them as soon as possible Fast, Major, fast Go ahead, go ahead

0: सीतो, ये सीतो।
1: कने, तू है यहाँ धारे?
0: सुन, साहेब रा सिपाही लिए मोहेशपुर आक्रमण को इतना इस छे। मुनिया वहाँ दे साथे थे के पौर दिखाई बे।
1: ठीक है, ठीक है।
0: मुझे इंची, कोई देखते पहले?
1: हाँ, आजा, तू जल्दी भाग।
0: सुन, साहेब रा घोट थे के निकाल ले, मुंह तो आदे साथे मिल बो। मुझे इंची सीधो।
1: हाँ, हाँ, जा, जा के रे।
2: चार चार बेटा मूर एक तो घरे लाई उड़ा कुताई क्यों न चे भगवान जाने
3: माँ हे माँ
2: कौन
3: कौन हूँ जल्दी दरवाजा खोल
2: काना हाँ काना बाबा मर एक तो रोज कुताई चिली रे
3: चिल्लाइश ना चार दिके सिपाही घूमचे तुहार कछे कुचिला तीर कोयटो आछे माँ
0: हाँ बीस ट्रावेक हुई चलेर बताई गुंजा आछे
3: हाँ मूलिया जाइची हाँ रे
0: हाँ
3: घरे कुछी दाना पानी आछे बड़ा भूख लग गया छे रे माँ
0: ओ खुनी लिया सी बूस बूस करने
4: हाँ कलमी ए कलमी बुढ़िया
3: हे माँ सिपाही मुँह भागलम माँ
2: भगवान
4: हे बुढ़िया
2: भूखा बेटा खेते चाहिला
4: अरे हे बुढ़िया दरवाजा खोल दरवाजा
0: तू कौन रे
4: सिपाही खोल जल्दी खोल
0: का मांगता
4: तुहार बेटा गुलान कुथाय सीधो कन्हो
0: मुका जाने
4: अभी कहाँ लगे कुथा को छिली
0: तुहार बापा लगे अबर काहे लगे मुझ चट चट बेटा लीचिस अगर हमार के भी ये चल पकड़ ले चल
4: क्या झूठ बोल बिकलाई झूठ बोल ले जाने मेरे दो बहा
0: मोर
4: सत्य
0: सत्य
4: बर्बाद हुए
0: सत्य न सत्य

0: चल हनुमा मैं भाग जा चल बे सुल्तान।
1: इस भाई रुक जा, कोई आश्चर्य मानू बच्चे है।
2: मुनिया
1: हाँ
2: तू भी खाने
1: हाँ
2: कुछ खबर मिला?
1: बात मत करो कैप्टन साहब,
2: हाँ
1: हमारे साथ है पीछे पीछे आओ। रुक जा रुक जा, वो लोग नजदीक से है होशियार साहब।
3: होशियार कहीं होशियार, धीरे धीरे पोप दिखे चौल के ना
0: कानी भाग भाग भाग कानी भाग।
4: क्यों लो सिद्धो गिरा का है सिद्धो,
0: अबर गोली लगे छड़े कानी
4: होट होट सिद्धो सिद्धो होट सिद्धो
0: जिसका तो कुछ ही तू
4: होट
0: होट बच जाए। अमर के भूल तुरा
4: लाई होट
0: लाची कानी लाची उठते लाची तुरा भाग यहाँ देखे नहीं तो सबाई सबाई जान तो जाबे जा जा भाग कर
4: लाई तू आके तेरे मुंह कुत्ता जी बोला होट होट तू आके कांदे उठा ले ची होट
0: कानी कानी कानी
4: सिरों हमरा के नहीं
0: बोली लगे एक तू की कोली कानी एक अकों की कोली कुत्ता के जाए कुत्ता भागी
1: कुत्ता भागी कुत्ता भागी ए सिपाही बंद सिद्धो का बंद बंद सिद्धो का
3: सालो हरामी मिया सावताल हुए तू वहाँ के डराई दिले
0: सालो बेईमान हराम चादा मुनिया
1: सब ऐसे ही सिद्धो
0: सिद्धो
1: ऐसे ही सिद्धो
0: ब्लैक ब्लैक पत्थर ले चल सिपाही हमारा साथ हुआ के बेधे लिया चल ए सिपाही
1: चल
0: दमन कैप्टन चल चोर हराम जला आज
1: साहब साहब तुम सिद्धू के लिए जाओ मुंह कानून पत्ता लगाई वो भी आसे पासे जंगल में जरूर आए। आओ सिपाही आओ
0: चोर दे
1: चल
0: चोर दे मुझे चोर दे

0: पेड़ के नीचे जा, पेड़ के नीचे जा।
1: हाँ, अरे पीछू पीछू,
0: हाँ
1: पीछे जा हरमा,
0: कोई अंश छे
2: सालो अंदर आ मैं। ओ
0: ये बेईमान मुनिया रामी
2: कहना ना तू कुछ तीर से
0: हम जाता सालो तुहार के जानवर खाक ई बार तुहार धर्म बाप के बुलाकर मुनिया
3: हेलो हेलो संथाल सेर शिदो माजी तुम्ही तो एखन भेड़ा बने गेछो हाँ चलो भागलपुरे तुम्हार विचार होबे फांसी
4: और तुहार विचार मुरा कुर्व साहेब सालो सफेद कुत्ता
0: शट अप यू ब्लडी निगर तुम्हाके कुत्ता दिया खिलाबो
4: मोर बार आगे तू सुने जा अंग्रेज मुरा किसान शुभ मुनिशेर पायर तोलाय पुड़े थके कि तू जी मुदेर पाम मड़ाई थी आइस बे वार पा दुटो भेंगे दुबो जी मुदेर बीटी छबादेर गाये हाथ दिबे वाके टांगीर कोपे दुखान कुरिये दिबो दिन आइस बे साहेब दिन आइस बे से दिन तुदेर ई दिस थेके खिदा कुरिबे यही सांताल रा विचार कुरिबे विचार करिबे मुदेर हुल को खोलो रुकिबे भाई साहेब हाँ हाँ ये हुल हमारे राजा दिन लड़ाई हमारे धर्म युद्ध लड़ाई।

0: बुढ़िया
1: केने केने की होय छे चंपा
2: की होय छे रे
0: कानो के खून करे साहेब रा नदी किनारे फेले दे छे
1: बेटा के लिए तू और कुलजीता ठंडा कर ली।

0: Konkan and Goa for the next 2 days. Similar conditions are also expected over parts of Sikkim, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe, sub-Himalayan West Bengal for the day. IMD said a gradual fall in maximum temperatures by 4 to 5 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 to 4 days. Meanwhile, the Met Department has forecast heat wave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh today. Benchmark domestic equity indices were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex was down 63 points to 76,665, while the Nifty dipped 9 points to 23,937 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and four states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in a 4-3 penalty shootout. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. यूरोबैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया. दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू. पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया. ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान. और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर. मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया. अब समाचार विस्तार से. यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है. ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है. एक रिपोर्ट.
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं. इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है. श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की. उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं. समाचार कक्ष से निखिल कुमार.
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके. कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं. अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी. उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है. कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं. इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं. 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक

0: पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा, मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम, विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष

20 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में

0: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह

0: हारे। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী মৈত্রীর প্রথম অধিবেশন শেষ হল। আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হবে ভারতীয় সময় বিকেল 3:30 এবং বাংলাদেশ সময় বিকেল 4:00। এখন স্টুডিওর ঘড়িতে ভারতীয় সময় 2:30 হয়ে 15 সেকেন্ড এবং বাংলাদেশ সময় 3:34 সেকেন্ড।

0: এখন শুনবেন হিন্দি সংবাদ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारम्भ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य

0: किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।

0: दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष

0: कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मैत्री अनुष्ठान प्रचारित होच्छे मीडियम वेवे 505 मीटारे अर्थात 594 किलोहर्ट्ज़। एखन शुनबेन कथाय गानी।